मन चाउ भया बैरागिया बल राम जियो संत जना हर मेल हर पाया मडभागिया बल राम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना वडभागी पाया हर कथिया कथ कहानी हृदय हर हर हर तुनि उपजी हर जपिय मस्तक भाग जियो

जैसे जल में है कमल निरालम, मुर्गाई न साण सुरत शब्द पव सागर तरिय, नानक नाम वखाण सुरत शब्द पव सागर तरिय, नानक नाम वखाण सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु के, जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटी है तुद दिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है सजन सच्चा पातशाह, सिर साहंदे साहो जिस पास बैठिया सोही है सबना दा विसाहो। सतनाम

प्रभु पूरी लोच हमारी कार्य स्नान गृह आए अनद मंगल सुख पाए गुर पूरै कृपा धारी प्रभु पूरी लोच हमारी कार्य स्नान गृह आए अनद मंगल।

उत्पुखै खाए चलिए दुख, सो क्यों विसरै मेरी माए। साचा साहेब साचै नाए रहा, साचे नाम की तिल वड्याई, आख थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिलकै आखण पाहीं,

राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपारा सब त्यावै है सब त्यावै तुजी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्याव हो संतो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं चौपाई पुनराशिष का काटा सीसा श्री अस्केत जगत के ईसा पोहपन ब्रिस्त गगन ते पई सब हिन आन बधाई दई।

तुम हैं छाड़ को यवर न त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिय है चुन चुन सत्र हमारी मारिय है आप हाथ दे मुझे उबरिय मरण काल का त्रास निवरिय हो जो सदा हमारी पच्छा श्री अस्तु जू करिय हो रक्षा राख ले हो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुस्तन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बवतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार

संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधुन के सुखी। एक एक की पीर पछान, कट कट की पट पट की जान। जा बुध करख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आ करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जा को भेव न पावत भेदा। ता कौ कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा शिव, निरंकार का चिन्त नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तो हितेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कही भूपा। अंडज जे रज से तजकीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुआ बैठा, कहूँ सिमट पयो संकरी कैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंपव, आज जुगाद स्वरूप स्वयं पव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता। जे अस्तु तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है, ताकि काल निकट नह ऐ है। रक्षा होए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताकि ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्व सकन कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे वारा। जिन नर नाम ते हारो का हा,

कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता, किलबिक सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता। श्री अस्तु जब भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई अड़ेला। सुने गुंग जो याहे सुरसना पावई, सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पौ निकट न तिन नर की रहै।

अर्ध सहस फुनतीन कहि जय भाद्रव सुदी अष्टमी रवारा तीर सद्रव ग्रंथ सुधारा स्वैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सवै बहु भेद कहे हम एक ना जाने।

अंदर हाओ लख खटिए लख संजिए खाजे लख आवे लख जाए जापत लेखे ना पवे ता जी किथे फिर पाहे लख शास्त्र समझावनी लख पंडित कर पढ़े पुराण जापत लेखे ना पवे ता सबे को परवान सच ना पति उपजे कर्म नाम करतार ऐन च हिरदे जे वसे नानक नदरी पार। आसा महला पहला। दीवा मेरा एक नाम दुख च पाया तेल उन चान ओ सोखिया चूका जम स्यो मेल लोका मर को फक्कड़ पाए लख पड़े मड़िया कर एकटे एक रती ले पाहे रहाओ पिंड पतल मेरी केसो क्रिया सच नाम करतार एथे उत्थे आगे पाचे इहो मेरा आधार गंग बनार शिव तुम्हारी नावे आत्म राओ सच्चा नावर तातिए जा एनस लागे पाओ एक लोकी होर समशरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शी का कबू ना निखुटत नाहे नानक पिंड बख्शीस का कबू निखुट सनाहे। आसा घर चौथा महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवत्या दर्शन के ताई दुख भूख तीर्थ किए जोगी।

गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कार गुरुदेव।

सिमर सुख पावो सिमरो जास बिसंबर एक है वेद प्राण सिमर सुध आखर जिनका एक जिस जीव सावे ताकि एक है दर्स तुहारो सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम प्रभ के सिमरन गर्भ न बसे प्रभ के सिमरन काल पर हरे प्रभ सिमरत कुछ बिगड़ न लागे प्रभ के सिमरन पो न व्यापे प्रभ का सिमरन साध के संग प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद प्रभ के सिमरन जपता पूजा प्रभ के सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभ के सिमरन हो सो भला से सिमरे जिनाब सिमराए प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझे प्रभ के सिमरन नाहि जम त्रासा प्रभ के सिमरन मन की मल जाए प्रभ जी बसे साध की रसना प्रभ का सिमर से तनवंते प्रभ का सिमर से जन परवान प्रभ का सिमरन से बहमोताजे प्रभ का सिमर से सुखवासी सिमरन ते लागे जनाब दयाला प्रभ का सिमर से पर उपकारी प्रभ का सिमरन से मुख सुहावे प्रभु सिमर तेन आत्म जीता प्रभु सिमर तेन अनंत कनेरे संत कृपा दे अन दिन जाग प्रभु कै सिमरन कार्ज पूरे प्रभु कै सिमरन हर गुण पाणी प्रभु कै सिमरन ने चलासन प्रभु कै

विश्वास रहो वे प्रभु की आज्ञा माने माते नानक स्वाहा सदा दयाल सर्व

निष्ठाकर को रख मन माए इसको सिमरत प्रम गत पावे इसे त्याहे सदा माने अंदर आठ पैस मिलोत इस रचना नान सदा त्याहे त्यावन जोग जिसे त्याग तवर लुभावे मन आठ है ताका जिसका विजय मुक्ता को जिस रसन बखाने मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म नानक बसे दी कर जावे लिबला वो जिस राम स्नेही मन सुख पावे हर जिस कहत मन सारनी पर ठाकुर प्राप्त आके मन सा सिमरो प्रभु ऊंचे नानक ताकी भगत करे मन जी सिमरत के वाल असीजे मन जी प्रभु को गुना विसारी राग पड़ोई प्रभु अपने मना ऊठ बैठा जिसे ते आई यहाँ मन आनंद तेरी रखे मन आठ पैर का जिसका ध्यान जिस प्रभु का सास सास चितारी सो प्रभु सिमर सदा अनूप सो प्रभु सिमर सदा दिन रात गुर प्रसाद नानक जिसके है ये प्रसाद वे कह विस्मार जे प्रसाद सुख सहजे वसना जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद सुख सहज समावे गुर प्रसाद नानक मन जागो जिस प्रभु का मूल मनो विसार रे मन मूल जागो जाव जिसे जान मन सदा जूरे रे मन मेरे तुदा शिवराज नान जाप जपे जप सोए आप को आए सो हर गुण गाओ प्रभु दयाले कमल विलास प्रभु दया

संग मुखूजल होत साधिके संग मिटे अभिमान साधिके संग बुझे प्रभ नेरा साधिके संग पाए नाम रतन साधिकी महिमा बढ़ने कौन प्राणी साधिके संग गोचर मिले साधिके संग आवे बस पंचा साध संग होए सब की रेन साध के संग ना कथु तावे साध के संग माया ते पिन साध संग दुश्मन सब मीत साध संग किस्यो नी बैर साध के संग ना ही को मंदा साध के संग ना ही होता आपे जाने साध बढ़ाई साध के संग ना कबूतावे साध संग बस अगोचर लह साध के संग बस ऐसा ऊंचे साध के संग दृढ़े सब धर्म साध के संग पाए

0: ब्रह्मज्ञानी
1: की कीमत नाए
0: ब्रह्मज्ञानी के सर्वम नाए
1: ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद
0: ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश
1: ब्रह्मज्ञानी का कथे न जाय दाख्य
0: ब्रह्मज्ञानी का सर्वता ठाकुर
1: ब्रह्मज्ञानी कीमत कौन बखाने
0: ब्रह्मज्ञानी की कर ब्रह्मज्ञानी जाने
1: ब्रह्मज्ञानी का अंत ना पार
0: नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार
1: ब्रह्मज्ञानी सबसे इसका करता
0: ब्रह्मज्ञानी सजीव नहीं मरता
1: ब्रह्मज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता
0: ब्रह्मज्ञानी पूर्ण वर्ग।

सत्ते जाने आपस को मंदा मन की वासना मन ते टरे नानक कोट मदे को ऐसा परस बिसन की माया दे होए पेन तिस वैष्णो का निर्मल धर्म केवल भक्ति

0: नानक ऐसा भगवती भगवान को पावे। राम नाम आत्म में सोते उस पंडित के तेज जग जीवे। सो पंडित फिर जो नावे सुख में जाने असूल। नानक उस पंडित को सदा देश जो पढ़ना में जपे को नाम। सात संग पावे जन कोए
1: पात्र को तारे।
0: कल्याण रूप मंगल गुण गाव नानक दिस मिले जिस लिखे तुर कर्म। जिसका नाम सकराम दास दास संतर पाए तिन पाया। सो दास लगे परवान जिस दास को सब सो जी परे। ऐसी जुगत नानक राम दास जीवन मुक्त सो कहावे। सदानंद नहीं वियोग तैसा अमर तैसी पिकाटी। तैसा रंग तैसा राजान नानक।

0: चलो सुन,
1: कई कोट आचार बिहारी,
2: कई कोट बन पर मैं उदासी, कई कोट पीसर होते, कई कोट का पाप बिचारे,
1: नान करते का अंत न पावे,
2: कई कोट अंध ज्ञानी, कई कोट अभी का अंत मन खोर, कई कोट पर तुम न करे, कई कोट पर देश शर्माए, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट राजे रस होगी, कई कोट पाथर बिरख निपटाए, कई कोट देश भो मंडल, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र, नानक जिस विस भावे देश जिस निस्तारे, कई कोट वेद पुराण सिमरत अर्थशास्त्र, कई कोट नाना प्रकार जंत,
1: कई कोट गिरी मेर स्वर्ण दीवे,
2: कई कोट उपरे सुकर मिराज, नानक आप अलप्त रहा भरपूर,
1: कई कोट नरक स्वर्ग निवासी,
2: कई कोट मोजोनी फिरे, कई कोट काले थक पाए, कई कोट माया में चिंत, नानक सबकी प्राप्त के हाथे, राम नाम संग दिल निबलागी, आत्म है पार ब्रह्म लहते, इनको मिल रब नास, पार ब्रह्म दिल लागा रंग, नानक तेजन सदा तन तन, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई जुगत कीनो विस्तार, सदा सदा एक एक तंकार, प्रभावे प्रभावे साई समात, आपे आम नानक प्रसोए, दिन्ते होता तम प्रकास, सदा निहाये को नेत्रे, अमर में पैसा सदी जीवे, आत्म रस

0: अश्वदी
1: अश्वदी करण करावन करने जोग
0: पावे सोई योग
1: हिन में थाप उठा पन्हारा
0: आदने किच बारा बारा
1: हुक में तार अदर रहावे
0: हुक में उपजे उपन सुमावे
1: हुक में ऊंच नीच व्यवहार
0: हुक में निक्रम प्रकार
1: कर कर देखे अपनी वड्याई
0: नान सब में रसमाई
1: प्रपावे मानुकत पावे
0: प्रपावे दा पात त्रावे
1: प्रपावे

0: आवे सो कार करावे
1: नानक दृष्टि बनावे
0: कहो मनुख ते क्या होए आवे
1: दूध पावे सोई करावे
0: इसके हाथ होए ता सब किछ ले
1: दूध पावे सोई करे
0: अनजानत भिख्या में रचे
1: ये जानत आपका नाम बचे
0: पर में पूला दे दिसतावे
1: माए जानो मेरावे
0: कर कृपा जिस अपनी भगत दे
1: नानक दे जन नाम ले
0: खिन में नीच कीट को राज
1: पार ब्रह्म ग्रीन राज
0: जाका दृश्य कछु न आवे जाको अपनी करे बख्शीस जो पिंड सब तिसकी रास
1: पूर्ण ब्रह्म प्रकाश
0: अपनी बनत आप बनाई
1: नानक जीवे देख बढ़ाई
0: इसका बल ना ही इस हाथ आज्ञाकारी बपुरा जी
1: ज्योतिष पावे सोई मंदियो
0: कभू ऊंच नीच में बसे।

0: कबु महा क्रोध बिकराल,
1: कबु स्वर्गीय दरबार,
0: कबु होए बहे बड़ राजा,
1: कबु बिगारी नीच का साजा,
0: कबु अपकीर्त मह आवे,
1: कबु बला बला कहावे,
0: जो प्रभ राखे तिवे रहे,
1: गुर प्रसाद नानक सच कहे,
0: कबु होए पंडित करे बखियान,
1: कबु मुंतारी लावे ध्यान,
0: कबु तट तीरथ स्नान,
1: कबु से साधक मुग्यान,
0: कबु कीट हस पतंग होए जी,
1: अनेक जोन परमे परमिया,
0: नाना रूप ज्यो स्वागी दिखावे, ज्योतिष पावे सोई होए,
1: नानक दूजा वरना कोए,
0: कबू सात संग एह पावे,
1: उस स्थान ते बौर नावे,
0: अंतर होए ज्ञान प्रकाश,
1: उस स्थान का नहीं विनाश,
0: मंतन नाम रते एक रंग,
1: सदा बसे पार ब्रह्म के संग,
0: जो जल में जल आए खटाना,
1: ज्योति संग

दुश्मनी सान के दुख जमते नहीं छूटे सान के दुख नरक में पाए सान के दुख सोवते हीन सान के दुख थान प्रश होए नान सत्संग निंदक पीतरे संतन के दुखन काग जोलवे संत के दुखन दिन जोर गरमाए संत के दुखन सबको चले संत के दुखन नीच निचाए नानक संत पावे ता ओमी कर पाए संत का निंदक हिंदक न पाए संत का निंदक प्रवेश शर्मारा संत का निंदक दुखिया हर दीन नानक संत पावे ता उसका भी हुए मोक संत का दुखी किसे का नहीं मित संत के दुखी को सब त्यागे संत का दुखी सदा बिकारी संत की दुख ना सुख ते ठरे नानक संत पावे ता ले मिलाए संत का दुखी किते कार न पहुंचे संत का दुखी उजड़ पाइए जो सांस बिना मृतक की लोथा आपन बीज आपे ही खाए नानक संत पावे ता ले उबार जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए जो पाव किंतन नहीं त्रापे जो बोलते थे माय बुलाला संत का दुखी सत मिथ्या कहत नानक ज्योतिष पावे सोई दिया संत के दुखी को दरगे मिले सजाए संत का दुखी ना मरे ना जिवाइए संत का दुखी उठ चले निराशा जैसा पावे तैसा कोई होए नानक जाने सच्चा सोए सदा सदा जिसको नमस्कार जिसे क्या वो सास गिलास जैसा करे तैसा को दिया

0: मानो की टेक वृत्ति सब जान
1: धोवन को एक है भगवान बोन कृष्ण लागे आए
0: हरे राखे को आप
1: मानो के किच नहीं हाथ
0: सबको बुझ सुख होए
1: जिसका नाम रखकंठ परोए
0: सिमर सिमर प्रभ सोए
1: नानक बिगन न लागे कोए
0: मन में कर निरंकार
1: कर्मन मेरे सद व्यवहार
0: रस नाम रत पियो
1: सदा सुहेला कर ले जियो
0: नैनो पेक ठाकुर का रंग
1: साथ संग बिन से सब संग
0: चलो मार्ग
1: मिठे पाप जपिए हर बिंद
0: कर्म श्रवण हर कथा
1: हर दर के नानक उजल
0: मता
1: सदा सदा हर के गुण गाए
0: राम नाम जो करे विचार
1: सेतन अंत कनी संसार
0: मंदन मुख बोले हर मुखी
1: सदा सदा जानो ते सुखी
0: को एक एक पछाने
1: एक उद की ओ सोची जाने
0: नाम संग जिसका मन मान्या
1: नाम
2: निरंजन जान्या
0: गुरु प्रसाद अपन आप सुजे
1: जिसकी जानो तृष्णा बुझे
0: सा संग हर हर जिसके
1: सर्व रोते हो हरजन
0: रहन कीर्तन केवल बख्यान
1: रस्त में सोई निर्पान
0: एक ऊपर जिस जन की आशा
1: जिसकी कटिए जम की फासा
0: की जिस मन भूख
1: नानक से लागे दुख
0: जिसको हर प्रभ मन चितावे।

0: पाल
1: सबल सगल की चिंता जिस मन माए
0: दे बेटा कोई नाए
1: रे मन मेरे सदा हर जाप
0: अब नासी प्रभा पे आप
1: आपन किया कछु न होए
0: जो प्राणी लो जय कोए
1: तिस बिन नाही तेरे किछ काम
0: नानक जपे कर नाम
1: रूपवंत होए नाही मोहे।

0: त्याग
1: तिसदे परे नाई किचको ए
0: सर्व निरंतर एको सोए
1: आपे बिना आपे दाना
0: गैर गंभीर गही सुजाना
1: पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद
0: कृपा निदान दयाल बक्सन्द
1: सा तेरे की चरनी पाओ
0: नानक के मन अनराओ
1: मनसा पूरन चरना जोग
0: जो कर पाइए सोई होग
1: भरन भरन जाका नेतर पोर
0: जाने होर
1: आनंद रूप मंगल सजा के राज में राज योग में जोगी त्याए त्याए भगतान सुख पाया जाकी लीला की मिदनाए
0: हरे भक्ताए
1: पिता का जन्म के जाने पूत
0: सगल परोए अपने सूत
1: समत ज्ञान।

0: नाना वेद की नौ विस्तार
1: बाबा बेदासी एक अंकार
0: नाना चलत करे किन माए
1: पूरे हो पूरन सब ठाए
0: नाना विधगर बंत बनाए
1: अपनी कीमत आप पे पाए
0: सब घर तिसके सब तिसके ठाओ
1: जब जब जीवे नानक हर नाओ
0: नाम के तारे सगले जंत
1: नाम के तारे खंड ब्रह्मंड
0: नाम के तारे सिमरत वेद पुराण
1: नाम के तारे सुरन ज्ञान ध्यान
0: नाम के तारे आकाश पताल
1: नाम के तारे सकल अकार
0: नाम के तारे पुरिया सब पवन
1: नाम के संग उतरे सुन सुन
0: कर कृपा जिस अपने नाम लाए
1: नानक चौथे पद में सो जन प्रत पाए
0: रूप सत जाका सत स्थान
1: पुरख सत केवल प्रदान
0: दूत सत सत जाकी वाणी
1: सत पुरख सब माए समारी
0: सत कर्म जाकी रचना सत
1: मूल सत सत उत्पत
0: सत करनी निर्मल निर्मली
1: जिसे बुझाए तिसे सब पली
0: सत नाम प्रभ का सुखदाई
1: विश्वास सत नानक गुरते पाए
0: सत भजन साधु उपदेश
1: सत्य जन जाके हृदय प्रवेश
0: सत नृत बुझे जे कोए
1: नाम जपत ताकी गत होए
0: आप सत किया सब सत
1: आपे जाने अपनी बिदकत
0: जिसकी सृष्टि सुकरने यार
1: अवन न पूजे करत विचार
0: करते की मेहनत न जाने किया
1: नानक ज्योतिष पावे सो वर्तिया
0: बिस्मन बिस्म पे बिस्मार
1: जिन पूजे तिस आया स्वाद
0: प्रभु के रंग राज जन रहे
1: गुर के बचन पदारथ ले
0: होए दाते दुख काटन हार
1: जाके संग तरे संसार
0: जन का सेवक सो बड़ पागी
1: जान के

0: गुरबचन हर नाम उचरे, गुर का सिख विकार ते हटे, गुर का सिख वड पागी है, नानक सतगुर सिखो जी लाल समारे, गुर की आज्ञा मन में सहे, हर हर नाम हृदय सत्यावे, तिस सेवन के कारज रास, तिसको होत प्राप्त स्वामी, नानक सो सेवक गुर की मत ले, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने, अनेक बार गुर को बल जाए, आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता, एके आप नहीं कछ कर्म, नानक ऐसा गुर बट पागी पाई है,
1: परसा जतत निर्मल रीत, पार ब्रह्म की दरगह गवे,
0: मन संतों का आत्म पटियाने, अमृत दृष्ट पेखे बृहस्पत, नानक जिस पावे तिस ले मिलाए, सतपुरख पूरन विवेक, अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी, ताकि कीमत किने न पाए, चरण कमल हृदय सिमरे, नानक जिस पर साथ ऐसा प्रभ जपने, अमृत में अमर सोए, जाके मन पकड़े गुंतास, सच उपले सेवक को दे, मन मैं राखे हर हर एक, नानक परम मोह दुख ते नासे, अनंत प्यार दुखता ते पाए,
1: साधु के पूर्ण उपदेशे,
0: सकल व्याध मानते गैन से, साथ संचप नाम मुरारी, सुन नानक हर हर जस कवन, कला तार्जन सगली मोही, अपनी कीमत आपे पाए, सर्व निरंतर एको सोए, पै परगा साध के संग।

चरण कमल मृत माए उदारो दृढ़ करो हमार बात संचल का निर्मल मंत्र सर्व रोग नानक मिट जाए सोतना सेवा दे पावे सो सुख साधु संग प्रीत सा शोभा पज हर की सन्नी रोग मिटे हर राव का दुलाए जब नानक करके परवान दैदिस तावत आवे ठाए जाके हृदय बसे हर सोए सिमर सिमर सदा सुख पाओ भगत पाए आत्म परदास को नानक काटी चंपासी जन्म मरे सो काचो काचा आप त्याग सर्व गुरुदेव हर हर सिमर प्राण आधार सिमर सास भेद विचारे मन वंचित नानक फल पाए तू क्या तो आवे मूर्ख बना इनते कहूँ तुम कवन सुना था इनते कहो कवन छुटकार झूठा डाव झूठ पासारी नाम विसार नानक पछताना भगत बिना को शाने निर्मल होए तुम्हारो चीत जन्म जन्म के किल बिक जाए सुनत कैद रहत कर पाओ सह सुभाए नानक गुण गाओ बिनस जाए हो में मिखैल सास ग्रास हर नाम समाल साथ संग पावे सचतना यह सुख तंगे विकार को नानक जाके मस्तक लेख एक सिमर एक को मनाए मन तन नाम जपे एक भगवंत पूरन पूरी रहो प्रभ्याप एक रात प्राचत गए।

0: भटक रही डोलाने, उपजे चाओ साथ के संग,
1: अंतर बरगा सांदे निवलाग,
0: नानक नाम रते सुख होए, सतगुरु ते निर्मल मित लई, सेवक किन्नो सदा देहाल, जन्म मरण दुख परम गया,
1: राम रिया सत्संग जूरी, नानक भक्ति नाम समाए,
0: सो क्यो बिस्रे जे किया जाने, सो को बिस्रे जे जीवन जिया, गुरु प्रसाद को बिरला लाखे, जन्म जन्म का टूटा गाडे,
1: प्रभु अपना नाम जनते आया,
0: आ त्याग जपो हर नाम, आप जपो अमरे नाम जपाओ, बिन भक्ति तन सोच से चार, बुढ़ जात पाए विश्राम, नानक नाम जपो गुंतास, मन तन अंतर ए सुआओ, मन बिकसे सार चंद होए, बेला को पावे संग, गुरु प्रसाद नाम जप लिया, नानक रहा सर्व समाए, भगत वचल सदा कृपाल, सर्व कटा कर प्रतपाल, भगत जना के प्राण आधार, भगत पाए लाए मन हित, नानक तुमरी शरण पूरक भगवान, एक निमक ते हके गुण गाए, हर के नाम की कथा मन पाए, रसना जपती हर हर नीत, हृदय बसे पूरन

0: आपुन तब कहते होता, तब बैर विरोध के संकमात, तब हर शोक को फिर से व्यापत, तब मोह कहां किस खोबतर, नानक करने हार न दूजा, तब बन मुक्त कहो कोसकोगनी, तब नरक स्वर्ग को कौन बतार, तब से उसकत आए, तब कवन डर कवन कतर, नानक ठाकुर अगम अपार, तय जन्म मरण कहो का विनाशन, तब जम की त्रास करो खुश होए, तब चित्र गुप्त के सूचक लेखा, तब कौन झूठे कौन बंधन बांधे, नानक आपन बापे पर जा, तय बिन मैल कहो का तोता, तय कौन को मान कौन अपमान,
1: तय शरण से तलक कहो की सर,
0: तय किसे पू कवन तृप्तावे, नानक अट्टे का नाही सुमार, तब कवन माए बाप मित्र सुख पाई, देव काम को चीन, ओ सकन का बिचारे, तय कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा, नानक अपनी कर जानो आप, हुआ किसे व्यापत माया, तय गुण का नाही परवेश, तय कौन अचिंत किस लागे चिंता, तय कौन कथे कौन सुनने हारा, नानक आपस को आप में पहुंचा, तय गुण विस्तार, कौन नरक को स्वर्ग पंचावत, होमे मोह परम पै पार, अनेक प्रकार की उपख्यान, जय पसारे पसार संप्राप, उनकी शोभा उनो बनी, आपे रस भोगन निर्जोग, जिस पावे

0: नाम प्रभु का लागा मीठा सर्व लोक पूर्ण प्रपाल जैसी आज्ञा तैसा कर्म चार गुण दिस पाए गुरु प्रसाद नानक सुपाओ ससिया सुर नखेत्र में एक आप अडोल न कबूल डोले मोल न पाई कोई मोल तार रहो स्वामी और पोत नानक दिन में विश्वास
1: साधना के हृदय कर्म
0: सब व्यापी नाम रख सचन सत वचन साधु सब कहत करम करावन प्रभ जन नानक दर्शन देख सब मोए
2: आप सत किया सब सत अपनी मित गत
0: पावेता करे विस्तार तक कर कला लखी नहीं जाए जिस पावे ते स्नेह मिलाए आपे आप पूर नानक दिस आप बुझाए
1: सर्व नैन आपे कणहार
0: आप जस आप ही सुना आज्ञाकारी की नी माया जो कुछ कहना सो आपे कहे नानक जा पावे ता ले समाए आपे जाने अपने जी की बहुत बहुत आपन संग्राज दूसर हुए ता सोची पाए गुरु प्रसाद नानक ने जान जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत
1: जिस पर सब जग कराया जानके संग चित्रा बिना आप मुक्त करे।

0: गुरु का सुन उपदेश
1: पार ब्रह्म निकट कर पेख
0: सा सा सिमरो गोविंद
1: मंत्र अंतर उत्तर चिंतन
0: आस नित्य गोतरंग
1: संत जना की तूर मन मंग
0: आप छोड़ बेंती करो
1: सात संग अगन सागर तरो
0: हर धन के पर ले उपंडार
1: नानक।

0: मावत होत दार
1: निस्तार
0: सफल जीवन सफलता का संग
1: रंग
0: जय जय शब्द नाद
2: बाजय
0: के मत
2: नानक उतरे दिन के साथ।

0: की सेवा
1: आल जंजाल बिगाड़ते रहते
0: राम नाम सुन रसा कहते
1: कर प्रसाद दया प्रभारी
0: नानक बिबी खेप हमारी सावधान एकागर चीत जिस

नानक जिसे प्राप्त होए बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान सबके मन

0: सतगुर मत गूढ़ बिमल सत्संगत आत्म रंग चलूल पया जाग्या मन कवल सहज प्रकाश्या अभय निरंजन करै लहा सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया तिर प्रसाद वस पंच करे कब कल ठकुर हरदास तने गुरु रामदास सर अपार परे सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया सिर प्रसाद वस पंच करे कब कल ठकुर हरदास तने गुरु रामदास सर अपार परे।
1: अनपो उन्मान अकल लिबलागी पारस पेटिया सहज करे सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए भंडार परे मेटिया जन्मात मरण पो पागा चित लागा संतोख सरे कब कल ठकर हरदास ने गुर रामदास सर पर परे मेटिया जन्मांत मरण पो पागा चित लागा संतोख सरे कब कल

संतोख सरोवर बसे, अमय रस रसन प्रकाश है, मिलत सांत उपजय, दुर्त दुरंतर नासे, सुख सागर पायो दिंत, हर मग ना हुटे, संजम सत संतोख, सील सनाम फुटे, सतगुर परमा

गुर रामदास कल उचरै तै हर प्रेम पदार्थ पायो आदले भगत जित लग तरे सो गुर नाम दृढ़ायो गुर रामदास कल उचरै।

प्रिय अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसियाए गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटिया तुद दिठे सच्चे पात साह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पात साह सिर साहांद साह जिस पास बहिठिया सोही है सबना दावि साह सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।

0: अनाथ है, अजय है, अजाद है,
1: अजन्म है, अवर्ण है, भूत है, अपर्ण है,
0: अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है,
1: अमीक है, रफीक है, तंद है, बंद है,
0: निभुज है, असूज है, अकाल है।

0: सुध सुधा दिख संत समूहा नेक मति के
1: सारे देश को देखे मत को न देखे प्राण पति के
0: श्री भगवान की पाई कृपा होते एक रति बिन एक रति के
1: माते मतंग जरे चय संग अनोप अतंग सरंग सवारे
0: गोल तुरंग कुरंग

0: कृपा करी अम्बर जग माता कंस करा पूरन सबराता
1: सकल देह को हरता दुष्टों के न को जय करता
0: श्री यीशु जब दे दियाला पूरन ग्रह गंधुत काला
1: मन वांछित फल पावे सोई दुख न तिसे व्यापत कोई डल
0: स्ने जो यास रस न पावे स्ने मोच लचतता

0: पते अनंत साहिब राम कली मल्ला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया
1: सतगुरता पाया सह सेती मन वचिया वधाइया
0: राग रतन परवार परिया शब्द गावनाइया
2: शब्दोत गावो हरि केरा मन जिनी बसाया
0: कह नानक आनंद होआ।

0: अकथ की करे कहानी,
1: करे कहानी अकथ केरी कित द्वारे पाइए।
0: तन मन सब सो कुर
1: तन मन तन सब सो कुर।

0: चतराई न पाया किने तू सुन मन मेरिया। माया ता मोनी तिने कीती जिंठ गोली पाईया।
1: कुर्बान कीता तिसे बिठो जिन मोह मीठा लाया।
0: कह नानक मन चंचल चतराई किने ना पाया।

0: ऐसा कम मूल्य ना कीचै जित अंत पछोताई है।
1: सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले,
0: कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले।
1: अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया,
0: अंतो ना पाया किने तेरा अपना आप तू जाने।
2: जी जान सब खेल तेरा क्या को आप खाने,
0: आख्या ता वेखै सब तू है जिन जगत उपाया।
2: कह नानक तू सदा गम है तेरा अंत ना पाया।
0: सोर नर मुंजम अमृत कोज दे सो अमृत गुर ते पाया।
2: पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन बसाया।
0: जी जन सब तू दियो पाए एक वेक परसने आया।
2: लभ लोभ अहंकार चुका सतगुरु पल्ला पाया।
0: कह नानक जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया।
2: भक्ता की चाल निराली चाला निराली भक्ता केरी बिखम मार्ग चलना।
0: लभ लोभ अहंकार त तिसना बहुत नाही बोलना।
2: कन्यो तिकी वालो निकी एत मार्ग जाना।
0: गुर प्रसादी जिनी आप तजया हर वासना समानी।
2: कह नानक चाल पक्ता जुगो जुग निराली।
0: जो तू चलाहे तिप चले स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे।
2: जिप तू चलाहे तिबे चले जिन्ना मार्ग पावे।
0: कर कृपा जिन नाम लाहे से हर हर सदा ते आवे।
2: जिसनु कथा सुनाए है अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे।
0: कह नानक सच्चे साहिब जो पावे तिवे चलावे।
2: एओ सुहेला सब सुहावा सब दो सुहावा सदा सुहेला सत गुरु सुनाया।
0: एहो तिन कै मन वसिया जिन तरों लिखिया आया।
2: इक फिरे घनेरे करे गला गली किने ना पाया।
0: कह नानक शब्द सुहेला सत गुरु सुनाया।
2: पवित्र होए से जना जिन्नी हर त्याया।
0: हर त्याया पवित्र होए गुरमुख जिन्नी त्याया।
2: पवित्र माता पिता कुटुंब सह सियो पवित्र संग सबाया।
0: कहंदे पवित्र सुन दे पवित्र से पवित्र जिन्नी मन वसाया।
3: कह नानक से पवित्र जिन्नी गुरमुख हर हर त्याया।
0: कर्मी सह न उपजै बिन सहसे सहसा ना जाए।
3: न जाए सहसा किते संजम रहे कर्म कमाए।
0: सहसे जियो मलीन है कित संजम तोता जाए।
3: मन तो शब्द लागो हर्षोर हो चित लाए।
0: कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजे ए सहसा इव जाए।
3: जियो मैं बारो निर्मल बारो निर्मल जियो तमैले तिनी जन्म जुए हारिया।
0: ए तिसना वड्डा रोग लगा मरण नो विसारिया।
3: वेदा मैं नाम उत्तम सो सुने नाही फिरे जो बेता लिया।
0: कह नानक दिन सतजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया।
3: जियो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते

0: वो ए सच्ची बाणी
1: सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी
0: बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी
1: कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आख वखाणी
0: हर हर नित करे रसना कहा कछु ना जानी
1: चित जिनका हिलया माया बोलन पैर वाणी
0: कहे नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी
1: गुरु का सबद रतन है हीरे जित जनाओ
0: सबद रतन जित मन लागा एहो।

0: ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ ਜਿਸਨੂੰ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ।
1: माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारिये,
0: मनो क्यों विसारिये ए वरदाता जे अगन में आहार पहुंचावे।
1: उसनु कहे पो ना सकी जिसनु आपनी लिव लावे,
0: आपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिये।
1: नानक ए वरदाता सो क्यों मनो विसारिये।

0: छुटकी लगी तृष्णा माया अमर वरताया
1: ए माया जिथर विसरे मोप जे पो दूजा लाया
0: है नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिन्नी विचे माया पाया
1: हर आप मुल के मुल ना पाया जाए
0: मुल ना पाया जाए किसे विटो रहे लोक विल लाए
1: ऐसा सतगुर जे मिले तिसनु सिर सौपिए विचो आप जाए
0: जिसदा जी तिस मिल रहे हर वसे मन आए
1: हर आप मुल के पातना के नानका जिन हर पल पाए
2: हर रास मेरी मन मंजारा हर रास मेरी मन मंजारा सतगुर तेरास जानी
1: हर नित जपियो जियो लाहा खट्यो ध्यानी
2: दन तिना मिलिया जिन हर आपे पाणा
1: कहे नानक हर रास मेरी मन हो आवण जारा
2: ए रसना तू अनरस राज रही तेरी प्यास न जाए
1: प्यास न जाए होरत किते जिछर हर रस पल्ले न पाए
2: हर रस पाए पल्ले पिए हर रस बहुर न तृष्णा लागे आए
1: ए ओरस कर्मी पाइए सतगुर मिले जिसे आए
2: कहे नानक होर अनरस सब विसरे जाहर वसे मन आए
1: ए जरीरा मेरे यार तू मैं जोत रखी ता तू जग में आया
2: जोत रखी तुद विच ता तू जग में आया
1: हर आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जग दिखाया
2: प्रसादी बूझिया ता चलत होवा चलत नदरी आया
1: कहे नानक सृष्टा मूल रचिया जोत रखी ता तू जग में आया
2: जाओ पया प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदिर बनिया
1: हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापे
2: गुर चरण लागे दिन सबागे आपना पिर जापे
1: अनंत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो
2: कहे नानक प्रभ आप मिलिया करण कारण जोगो
1: ए शरीरा मेरे इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया
2: कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया
1: जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया
2: प्रसादी हर मन वसिया पूरब लिखिया पाया
1: कहे नानक के शरीर परवान हुआ जिन सतगुर से उच चलाया
2: ए नेत्रो मेरे ओ हर तुम में ज्योतरी हर बिन अवर न देखो कोई
1: हर बिन अवर न देखो कोई नदरी हर निहालिया
2: ए संसार तुम देख दे ए हर का रूप है हर रूप नदरी आया
1: गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर कह हर बिन अवर न कोई
2: कहे नानक ए नेत्र अंध से सतगुरु मिलिए दृप दृष्ट होए
1: ए श्रवणो मेरे ओ साचे सुनने नु पठाए
2: साचे सुनने नु पठाए शरीर लाए सुनो सत बाणी
1: जित सुनी मंतन हरिया होआ रसना रस माणी
2: सच अलग बिडाणी ताकि गत कही न जाए
1: कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो साचे सुनने नु पठाए
2: हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया
1: बजाया वाजा पवन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया
2: द्वारे लाई पावनी इकना दसवां द्वार दिखाया
1: अनेक रूप नव नवनीत तिजा अंत न जाई पाया
2: नानक हर प्यारे जीव गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया
1: ए साचा सुहेला साचे घर गावो
2: गावो ता सुहेला घर साचे जिथे

0: बात है दुख दोखन को दल दूजन के पल मैं दल डारे
1: खंड खंड प्रचंड पहाड़न पूरन प्रेम की प्रीत संभारे
0: पार न पाए सके पद्मापत वेद कते अभेद उचारे
1: रोजी राज बिलोक कर राजक रोख रुहान की रोजी न टारे
0: कीट पतंग कुरंग कुजंगम भूत पविक पवान बनाए
1: देव देव खपे अमेव न पेम लख्यो प्रम स्यो परमाए
0: वेद कुरान कतेब कुरान हसेब टके कर हाथ न आए
1: पूरन प्रेम प्रभाव बिना पत्स्यो किसी पद्मापत पाए
0: आद अनंत अगाध अब देख सु भूत पविक अपान पवान अबे है
1: अंतहीन अनातम आप अदाग दोग छिद्र छे है
0: लोगन के करता हरता जल में थल में पड़ता प्रवे है
1: दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद मापते हैं
0: काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न सोग।

ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत जूनी सैभं गुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोकां नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे आसर